श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय, भगत जी महाराज नी जय, शास्त्री जी महाराज नी जय,